0: तो थोड़ा सा बताएं इस बारे में।
1: जरना मेरे ख्याल में कि हमें डेली रूटीन में अननेसेसरीली चलते हुए फैंस, एसीज और हाई वोल्टेज लाइट्स स्विच ऑफ कर देनी चाहिए
0: जी,
1: और अप्लायंसेस को एनर्जी सेविंग इन्वर्टर मोड पर चलाना चाहिए। उसके अलावा हम वाटर वेस्टेज को रोकें
0: जी,
1: ठीक है, और क्लीन अंडरग्राउंड वाटर लेवल जैसे कि आपको पता है कि तेज़ी से ड्रॉप कर रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान में बहस हो भी चुकी है
0: जी,
1: और इसलिए कार वॉशिंग या डोमेस्टिक कोर्स में टैप रनिंग को छोड़ने के बजाय बकेट्स यूज़ करें
0: जी,
1: जिसकी वजह से सेव हो सके ज़्यादा पानी। और इसके अलावा अगर हम सिंगल यूज़ पॉलीथीन शॉपिंग बैग्स और प्लास्टिक बॉटल्स वाटर ड्रेनेज को ब्लॉक करती हैं, जैसे कि आपको पता है
0: जी,
1: जो यहाँ पे भी आपको पता है बैंस हैं
0: जी,
1: और जैसे कि सॉइल पोल्यूशन बढ़ती है जिसकी वजह से
0: जी।
1: इसके अलावा मार्केट जाते वक्त वाशेबल क्लॉथ बैग्स जो जिस तरह के यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, यही वो चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हम बैग लैग करते हैं। काफ़ी दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं
0: जी।
1: और इसके अलावा आपको भी बताएं कि आप क्या कहते हैं।
0: एहतशाम, मेरे नज़दीक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्री प्लांटेशन। मेनली हमें इसी चीज़ पे वर्क करना चाहिए कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगा सकते हैं, जितने ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं, मतलब ना सिर्फ न्यूज़ीलैंड में, ऑब्वियसली यहाँ पे तो अगर आप नहीं करें तो डेफिनेटली कौंसिल कर देगी
1: इसी तरह,
0: लेकिन ये तो नहीं है कि यहाँ पे रुक जाएगा। स्पेशली ये चीज़ है पाकिस्तान के लिए, ये चीज़ हमें अवेयरनेस देनी चाहिए अपने पाकिस्तान में जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे, उनको इस चीज़ की ख़ास तौर पे अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है दरख्त उगाएं। इसी चीज़ में बेहतरी है पाकिस्तान की भी, माहौल की भी, क्योंकि अगर हम आज इस चीज़ को ले कर चलेंगे तो हमारा फ्यूचर फिर ब्राइट है, वरना अगर हम आज इस चीज़ को छोड़ देंगे, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप, मतलब हमारा मैसेज कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए है या फिर हम
1: किसी स्पेसिफिक
0: कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो जो हमें सुन रहा है या सुन सकता है उसके लिए ये मैसेज है कि आप जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। इसके अलावा एक चीज़ जो मतलब अभी रिसेंट ईयर्स में देखने को मिली है वो है ईवीज़ का यूज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब आगे जो टाइम आ रहा है, आगे जो दौर आ रहा है वो भी ईवीज़ का ही आ रहा है। आपको पता है कि मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितनी ज़्यादा यहाँ पे इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं
1: जी,
0: और इन चीज़ को इस चीज़ की इन लोगों को अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको पता है कि अपना माहौल साफ कैसे रखना है, किस तरह ले कर चलना है ताकि कल को हमारा क्लाइमेट को उस तरह अफेक्ट ना हो। तो यही चीज़ मैं पाकिस्तान के लिए भी कहता हूँ या जो भी लोग बाकी हमें सुन रहे हैं कि अपने अपने मुल्क में, अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें। मतलब अगर आप कोई चीज़ बाय करने जा रहे हैं, कोई मोटर बाइक बाय कर रहे हैं या आप कार्स बाय कर रहे हैं, तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप ईवीज़ को यूज़ करें। उसकी वजह यह है कि एक तो उनकी वो जो हम फॉसिल फ्यूल्स जिसे हम मतलब स्मोक वगैरह या सॉरी जो हम कोल वगैरह और इस तरह के ऑयल्स डिफरेंट हैं वो उनको यूटिलाइज नहीं कर रही। उसका मेन पर्पस है कि इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज होना और नो एमिशन,
1: yes।
0: तो वो चीज़ एक बहुत बेहतर है मेरे ख्याल में। इस चीज़ को हमें आगे लेके चलना चाहिए कि ये मैसेज जाना चाहिए कि आप ईवीज़ को यूज़ करें बजाय इसके कि आप पेट्रोल व्हीकल्स को यूज़ करें। तो इसके अलावा एहतशाम, आप थोड़ा सा कोई अगर फाइनल मैसेज देना चाहते हैं, फाइनल अवेयरनेस।
1: जनाब मेरे ख्याल में ना कि क्लाइमेट चेंज आप किसी रिसर्च पेपर या इंटरनेशनल सेमिनार या टीवी न्यूज़ का इशू अब नहीं रहा
0: जी।
1: अगर हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, ये अब एक ग्राउंड रियलिटी बनकर हमारे जो मंथली बजट है, क्रॉप अवेलेबिलिटी है, हेल्थ और रोज़ाना के टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहा है
0: जी।
1: अगर ये हमारे सिस्टम और पॉलिसी चेंजेस जो गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लेकिन हमारी हर रोज़ की स्मॉल रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस और कलेक्टिव कम्युनिटी एक्शन ही आने वाली जनरेशन को एक सेफ, स्टेबल और ब्रीदेबल वर्ल्ड प्रोवाइड कर सकती है। आई थिंक ये मेरा एक फाइनल मैसेज है
0: जी, और मेरी तरफ से भी फाइनल मैसेज यही

0: रहेगा इच्छाम के हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पौधे उगाएं, ईवीज को यूज करें, और यही एक वाहिद तरीका है जिससे हम अपने माहौल को साफ रख सकते हैं, क्योंकि ये वो तरीके हैं जिनको यहाँ की कंट्रीज ने तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हम लोग अभी एज कम्युनिटी ऑफ एशिया, या आप कह लें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी के तौर पे, हम इस चीज़ में अभी बहुत पीछे हैं।
1: बिल्कुल डेफिनेटली
0: तो मेरे ख्याल में मेरी तरफ से यही मैसेज जाना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप इन चीज़ों पे गौर करें, और हमारे जो हमारा माहौल है उसको साफ रखने में हमारी मदद करें। तो ऑल दी
1: थैंक यू
0: बेस्ट,
1: सो मच फॉर लिसनिंग अस,
0: थैंक यू
1: हमारे
0: एचशाम,
1: साथ रहिए.
0: थैंक यू।
1: You have been listening to Industry Otago on OAR FM. Thank you for joining us as we connect Pakistan and Otago. Two lands, one voice.
0: Listen back on Spotify, Apple Podcasts, oar.org.nz. Until next time, Khuda Hafiz and Kaki Te Aano.
2: OAR FM, access to the airwaves.
3: This is MG. Join me every second Friday at 11 a.m. for MG's Country Show. I play all my favourite country songs as well as dedications, only on 105.4 FM and 1575 AM. Thanks to the Community Care Trust.
4: Jazz Cafe. A one-hour smorgasbord of jazz from the dawn of the recording age to the present day.
5: Join me, Lou McConnell, Thursday live at 11 a.m, repeated on Sunday at 4 p.m. Or FM Dunedin, brought to you by Rhubarb on Highgate.